0: लेते हैं। सही कहा था। Put me on a follow-up status on it in high school.
1: Copy.
0: Green item 23.
1: Copy.